साक्षी सचिया सगा पिसा चेला सूद कानो Πάλεψα στην αγάπη μας, πάλεψα στην αγάπη μας.